पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

सनम जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं कहते हैं सब मगर